त्रिपतास मिल संगत गुण परगास, जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास।

कह बिब विचार काश नाहे जल ते उपज तरंग ज्यों जल ही बिखै समाहे दोहरा जब आयस प्रभु को पयो जन्म धरा जग आए अम्मै कथा संक्षेपते सबहु।

इतनी सेवा प्रदान करने की कीर्तन कर दिया उला दी माफी बख्शनी अंप सत्कार भाई साहब गुरमेल सिंह जी कैनेडा वाले आप जो लड़ीवार कथा राही जोड़न गए उन्होंने पास प्यार का सामना करो।

पकरे। ब्रह्म ज्ञानी सगल क्रिय नाथ ब्रह्म ब्रह्म ज्ञानी तीना ब्रह्म ज्ञानी की सब प्रमाया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ ब्रह्म पाया ब्रह्म ज्ञानी सदा सदु समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृहट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन दे मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी के निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नान ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक उपराज ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी सुमह ब्रह्म ज्ञानी पारपकार उमाह ब्रह्म ज्ञानी के नानी तंदा ब्रह्म ज्ञानी लेतावत बंदा ब्रह्म ज्ञानी कह हो इस पला ब्रह्म ज्ञानी सुफल पला ब्रह्म।

सदानंद ब्रह्म ज्ञानी कह कर सदानंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सह निवास नान ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता ब्रह्म ज्ञानी कह हुए अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जस करे प्रव्या ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये ब्रह्म ज्ञानी को बाल बाल जाइये ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत

अंतरगा तीर्थ मल नाहो, सबगुण तेरे मैं नाही कोए, विणगुण कीते भगत न होए। स्वस्थ आदि वाणी बरमाओ, सत सुहान सदा।

मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे सही तुदनु गावे जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन सेमै चेतना आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जनसी माया जिन उपाई कर कर वेखै कीता आपना जेब तिस दी वड्याई जो तिस भावै सोई करसी हुक्म ना करना जाई सो पातशाह शाहा पात साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख सरंपत झोली ध्यान

गुणगन उदार महिमा अपार आसन अभंग उपमा अपार आसन अभंग उपमा अनंग अनुप प्रकाश निशन अनास आजान बाहु शाहान शाह

मनमन प्रणाम, मनमन सलाम, मनमन प्रणाम, निर्भय निकाम, अद्भुत प्रचंड मिदगत अखंड आलस्य कर्म आदर्श धर्म सर्वा प्रनाढ्य आन डंड बाढ़ चाचरी शांत त्वा प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियम करे नरनामे कामे भुजंग प्रयाद छंद चतुर चक्र करता चतुर चक्र हरता चतुर चक्र दाने चतुर चक्र जाने चतुर चक्र वर्ती चतुर चक्र भरती चतुर चक्र पाले चतुर चक्र गाले चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे चतुर चक्र माने चतुर चक्र दाने चाचरी छंद ना सत्र है ना मित्र है ना परम ना पितर है ना कर्मंग ना काये अजन्मंग अजाये ना चित्र है ना मित्र है परे है पवित्र है प्रतीस है अधीस है अदृश है अग्रस है भगवती शांत व प्रसाद कथते के आ छिज देसा है के आ पिज भैसा है के आ गंज कर्म है के आ पंच भ्रम है के आ पिज लोके के आ दुत सोके के भूत भरने के विभूत करना है के राज प्रवाह है के धर्मंग तुजा है के आ शोक भरने के सर्वा अपर्ण है के जगतं कृति है के शत्रंग क्षत्रिय है के ब्रह्मंग स्वरूप के अनुभव रूप है के आद अदेव के आप अपेव के चित्रंग विहीन है के एक अधीन है के रोजी रजा के रही मेरे हक है के पाक बेअब के गैबुल गैब के अफुल गुनाह है के शाहन शाह के कारण गुरिंद है के रोजी दहंद है के राज करीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र दान है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पावण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राजा है के सर्वतर साजा है के सर्वतर दीना है के सर्वतर लीना है के सर्वतर जाहो के सर्वतर पाहो के सर्वतर देसा है के सर्वतर पेशा है के सर्वतर काल है के सर्वतर पाल है के सर्वतर हंता के सर्वतर गंता के सर्वतर पेखी के सर्वतर पेखी के सर्वतर काजा है के सर्वतर राजा है के सर्वतर सुख है के सर्वतर पुख है के सर्वतर त्राण है के सर्वतर प्राण है के सर्वतर देसा है के सर्वतर पेशा है के सर्वतर मान है सदैव प्रधान है के सर्वत्र जाप्या के सर्वत्र थाप्या के सर्वत्र पान है के सर्वत्र बान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वंग गली में के ब्रमंग भई में के आकल आलाम के साहिब कलाम है के सुनल बजू है तमाम रजू है मे सुल सलाम है सलीख मदाम है गनीम शिकस्त है गरीब प्रस्त है बिलंदुल मकान है जमीन समान है तमीजुल तमाम है रजुल निधान है हरीफुल अजीम है रजाय यकीना है अनेकुल तरंग है भेद है भंग है जीजुल निवाज है गनीम खराज है नृक स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रवाह है सुयुक्त सुधा है सदैव स्वरूप है बेदीन उभ है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्तुल सलाम है सदैव अकाम है दरबार स्वरूप अगाध है अनुभ है ओंगाद रूपे सना ओंगाद रूपे ना स्वरूप अनंगी नामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिवर्गम त्रिभाधे अगंजे अगाधे सभुंग सुभंग सर्वा गिस्सु सर्वा अनुरागे त्रिभुग स्वरूप है शिज है शुत है के नरकंग प्रणास है प्रतुल प्रवास है नृक प्रवाह सदैव सदा है विभुग स्वरूप प्रजुक्त अनुप है निरुक्त सदा है विभुक्त

है, अनास है, उदास है, अतंध है, अबंध है, अभक्त है, विरक्त है, नास है, प्रकाश है, रचंत है, सुनंत है, अलिख है, अधिक है, अलेख है, फेख है, अटा है, अगा है, असंभ है, अगम है, अनिल है, अनाद है, अनित है, सुनित है, अजात है, अजाद है, चरपट शांत अथवा प्रसाद, सर्वंगहंता, सर्वंगंता, सर्वंगख्याता, सर्वंगज्ञाता, सर्वं हर्ता, सर्वं कर्ता, सर्वं प्राणं, सर्वं तरानं, सर्वं कर्मं, सर्वं धर्मं, सर्वं युक्ता, सर्वं मुक्ता, रसाबल शांत त्वा प्रसाद। नमो नरगणासे सदैव प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्मं परमाते सदा सर्वसाथे अगा स्वरूपेन्द्रवाद विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपय न पोतरे न पुत्रे न सत्तरे न मित्रे न ताते न माते न जाते न भाते न साकं श्री कै मितो मेक सदैव प्रवाह अजय है अजा है भगवती छंद त्व प्रसाद। के जाहर जहूर है, के हाजर हजूर है, हमेशुल सलाम है, समस्तुल कलाम है, के साहिब दिमाग है, के सुन चिराग है, के कामल करीम है, के राज करहीम है, के करम रोजी धंधे के राज करहीम है, करीमुल कमाल है, के सुन जमाल है, करीमुल खराज है, गरीबुल नवाज है, हरीफुल शिकन है, रासिल फिकन है, कलंकं प्रनाश है, समस्तुल निवास है, अगंजुल गरीम है, रजायक रहीम है, समस्तुल जुबा है, के साहिब ग्राह के नरकंग प्रनाश है, बहसुल निवास है, के सरबुल गबन है, महसुल गबन है, तमामुल तमीज है, समस्तुल अदीस है, तमामुल तमीज है, समस्तुल अजीज है, परंग परमीश है, समस्तुल अदीस है, अदेसुल अदेसुल लेख है।

अमतेश्वर है, परमेश्वर है, कर्ता करता अमृता, अमृत अजवा करता अमृता, अमृत नायक है, खिलकायक है, विश्वम्बर है, करुणालय है, नायक है, सर्पायक है, पापंजन है, अर्गंजन है, रवतापन है, जब जापन है, अकलंग करते हैं, सर्वा करते हैं, कर्ता कर है, हरता हर है, परमात्म है, सर्वात्म है, आत्म बस है, जस के जस है, भुजंग प्रयाद छंद, नमो सूर्य सूर्य, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राज, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकार, नमो तेज तेज, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो रासंग तामसंग सांत रूपेण परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्र, नमो ध्यान ध्यान, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञान, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो करहे कर्ता, नमो सांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे, अराधंग विभूते, कलंकार रूपे अलंकार अलंके, नमो आसास्य, नमो बांग बंके, अभंगी स्वरूपे, अनंगी नामे, त्रभंगी त्रकाले, अनंगी अगामे, एक अश्री शांत, अजाय अलाय अपय अभय अपू अजू अनास अगास अगांज अभंज अलख अपाख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटा अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे लेखे भुजंग प्रयाद छंद नमस्ल प्रणामे समस्ल प्रणाशे अगंजुल अनामे समस्ल निवासेन्द्र कामंग विभूते समस्ल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणाशी सुतरंग विभूते सदा सच्चिदानंद सतरंग प्रणाशी करीमल गुनिंदा समस्ल निवासी अजाय विभूते गजाय गनिमे हरियंकरिं करीमल रहीमे चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भुगते स्वयं भव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुगालंग प्रणाशी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगंग विभूते चतुर चक्रवर्ती चतुर

गवा संग्रह पूर्ण हुए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें शाड़ कोई अवरना त्याहूं जो बार चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक

आधार वाजे पंच शब्द तित घर सभागै घर सभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन काओ से नाम हर कै लागे कह नानक तै सुख हुआ तित कर।

सतगुरु के नैना पाया, विन सतगुरु के नैना पाया, सतगुरु विचार प्रखंड कर टाक सुनाया, सतगुरु मणि ऐसा मुक्ता जिन विच मोच पाया, उत्तमे विचार है जिन सच्चे सुचित लाया, जग जीवन दाता पाया, जग जीवन

दयाल मिलाए गोर साधु गुर मिले हीर पराखा गुरु मिल जावे ते ताई नाम रतन प्राप्त हुंदा है। इस नाम रतन

हे निमाणिया दे मान निताणिया दे तान न्योटियां दी ओढ़ने आसरिया दे आसरा धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आप जिया दे हजूर उदास बेनती है जी आप जिया ने कृपा रहमत कीती है अमृत वेले तो सोने तख्तां ते प्रकाशमन होके दर्शन दीदार बख्शे हन आप जिया का कोटान कोट धनवाद शुकराना है अमृत वेले तो आप जिया की पावन हजूरी विच सुखमनी साहब जी दे पाठ पांच बाणियां दे नेत्रे मासा जी दी वार दे कीर्तन होए उपरंत आप जिया वालों बख्श मुख वाग दी कथा विचार छे पौड़ी आनंद साहब का जाप होया है।

महापुरखां की निंदा का वेख जे तपे नो फल लगा, सब गया तपे का कहलिया। बाहर बह पंचा बिच तपा सदाए, अंदर बह तपा पाप कमाए। हर अंदरला पाप पंचा नो उगा कर वेखा लिया, धर्म राए जम कंकरा नो आख छड़िया। इस तपै नो तिथे खड़ पाए हो जिथे महा महा हत्यारिया। फिर इस तपे दे मोहे कोई लगो हो नाही, एहो सतगुर है फिटकारिया। हर कै दरबर त्या सो नानक आख सुनाया, सो बुझै जो दइए सवारिया। महला चौथा, हर भगता हर आराध्या, हर की वड्याई हर कीर्तन भगत नित गाम दे। हर नाम सुखदाई हर भगतानो नित नावै दे वड्याई। बख्शियन नित चढ़ै सवाई, हर भगतानो थिर घरी बहालियन अपनी पैज रखाई। निंदका पासों हर लेखा मंग सी बौधे सजाई।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

कहो तुहारो द्वार, बाहें है की लाजा गोविंद दास तुहार, तिन्ने ताप नुवारण हार, दुखांता सुखरास, ताको विघ्न को लाग, जाकी प्रभु आगे अरदास, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, श्लोक महला पंजवा, तेरा की ताजा तो ना मैनू जोग की तो, मैं निर्गुण हारे को गुण आपे तरस पियो, तरस पिया मैं रहमत हो, सतगुर सज्जन मेले नानक नाम मिले ताजी, तन मन दीवे हरे, नानक नाम मिले ताजी, तन मन दीवे हरे, गौड़ी महला पंजवा।

0: वास कर ली बादशाह वास कर ली
1: अमृत नाम महारस पीन अमृत नाम महारस पीन निरपहु हे पर जो भगवान निरपहु हे पर जो भगवान साध संगत में लकीनो दान साध संगत में लकीनो दान शरण परे प्राव अंतर्याम शरण परे प्राव अंतर्याम नानकी ओट पकड़ी प्रभु स्वाम नानकी ओट पकड़ी प्रभु स्वाम नानकी ओट पकड़ी प्रभु स्वाम नानकी ओट पकड़ी प्रभु स्वाम नानकी ओट पकड़ी प्रभु स्वाम क्या श्री शान गोविंद मकंदे उदारे अपारे हरिया करिया नाम में अकाम गोविंदे मकंदे उदारे अपारे हरिया करे नाम में अकाम नाम में अकाम ढाडी दरबा मंगना दर कदे न छो ढाडी दरबा मंगना दर करे न छो मरता गोविंद संग सच भोजन जो